सुनना बाकी तुम्हारी यानी अपराजित रमती ताजा महिला परिवार चैंपियनशिप उपाधि जीते गुजराती के स्थित को फाइनल खेलना राजकाशा तीन एक सीट में पराजित भले यहां लगातार चैंपियन बने यहां पहले सीट 25-18 ने जितने खेल में अग्रता लिखे थे दोस्तों सेट 25-19 ने जितने खेल में पुनरागमन कर तेसरो सीट में 25-15-16 ने आपको पक्ष में खेल पारिखे थे यसैबीच बजेट थी खेलकूद पूर्वाधार में प्राथमिकता दिएको छ सरकारले खेलकुदको पूर्वाधारलाई ध्यान केन्द्रित गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको लागि धेरैभन्दा धेरै बजेट खर्च गर्ने निर्णय गरेको

0: से डेढ़ तीन से हो हम बहुत चीज पर परिवार का था
1: और अपना तीला को अपना था जब वह उससे अपना श्रावण अभ्यास तीला को ध्यान पड़ा।

Nice rocker top on my समाचार का मुख्य मुख्य शीर्षक पढ़कर सरकार आर्थिक वर्ष 2083-84 को वार्षिक वर्षको लागि 21 अर्ब 24 अर्ब 34 करोड़ को बजेट ल्यायो। अक्षरेखा.com अनलाइन पोर्टल औपचारिक रूप में संचालन में बांसवाड़ी बहुमुखी कैंपस में जेठ 7 गते निर्वाचन होने गिरवा गांव पालिका 4 की तरफ में थारू संस्कृति जगेना कर्नर 4 लाख लागत में देवठान निर्माण मानी सामती कर्मचारी को 21% वृद्धि करने अर्थमंत्री

फलफुल आयरनयुक्त खाना नियमित रूपमा खाए। जङ्क फुड कम गरी सन्तुलित खाना रोजी स्वस्थ किशोरी जो स्वस्थ भविष्यका आधार हो।

0: सहकार्यमा स्वास्थ्य कार्यालय प्रक्रिया से चल विभिन्नकारी समेत
1: धन्यवाद।

पार्टीजना पढ़ाई छोड़ना यानी उसको मन के लड़का से मशीन बेटर जैसे पूर्ण बन सके हमी आर्थिक अवस्था की कमजोर पढ़ाई लिखे न पढ़ेंगे मशीन अपने गाँव में प्रकट हो चाहिए आपका लड़का से मशीन पढ़ाई छोड़

बातों कहता हूँ कि जब तुम भाई को छोटे से मुख्यमंत्री तुम जब जवान जवान कहां से हो पुलिस की पुलिस के बारिश के पुलिस की छोटे से मुझे संघर्ष भी हत्या जाएगा क्या उनके कारण मतलब बिगड़ी हो बिगड़ी काम से गरीब गरीबी हो लेकिन समस्या गंभीर है

इस कार्यक्रम संचालन हुआ प्रतिभागी आज कार्यक्रम हमारे उद्योग महाराजी श्रमिक वर्ग अधिकार के लाभ प्राप्त करने के लिए मिला कार्यक्रम समाज का संयोजक

0: है खाना नहीं खाता, मुझे किसी तरह के ऊपर से खाइए संतोष सर की बात अपनी तबियत करके सब चीज का कहा मुझे मैंने तुम एकदम ठीक है हस्त हो गए
1: कार्यक्रम निजी क्षेत्र

साहब जी कार्यक्रम के आने बाद आप मुख्य आदमी तो आज तक के सब मैंने बहुत ढूंढ रहे हैं सब बढ़िया जाए लेकिन उनका कारण पाठों के सुन लीजिए तो गलत नहीं बात है। अब देखिए जैसे आपका करते नए नए युवा फिल्म गए थे पुरस्कार करके नए दोस्त को जाकर के सब करते हैं बड़े से ही कार्य मिलते हैं तो सर्वना बजट ठीक है बताना चाहता हूँ। मैं अब कमेंट कर सकती हूँ कि अब सरकार चाहिए या नीति तथा कार्यक्रम राजनीति में नीति तथा कार्यक्रम मुनासिक प्रकार से चाहिए सबसे कार्यक्रम जो है महत्वपूर्ण पाठ हो तो उसका साथ साथ काफी जेकर वास्तविक सवाल हो जेकर काफी मांग हो तो हम उपलब्ध हो सके आगे बढ़ाएगा अगर

0: खाने से पाए स्वस्थ भाई सुरक्षित परिवार
1: स्वास्थ्य का ही सुविधा।

0: करना, नाराबाजी करना और जरूरी आवाज से गतिविधि करना गैर कानूनी व वित्तीय अनुशासन विरुद्ध का निंदनीय कार्य हो।
1: यही अपने आप में वित्तीय संस्थाएं

0: स्वास्थ्य पर दिया गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा मत पर प्रतिबद्धता नागरिक स्वास्थ्य प्रति हमारे प्रतिबद्धता करती नागरिक स्वास्थ्य सेवा में सर्वसुलभ रूप में अधिक यहाँ तक स्वास्थ्य सेवा में आवश्यक प्रभाव से कौशल्य अस्पताल घासखंड में संपर्क करना हार्दिक अनुरोध कराती
1: अस्पताल से देना सेवा
0: चौबीसों घंटे डॉक्टर के प्रत्यक्ष निगरानी में उपचार करा जाए
1: प्रत्येक दिन बिहार 8 बजे से संध्या 6 बजे विशेषज्ञ फिजिशियन डॉक्टर से प्याज छाती कलेजो नशा मुटु चेक जांच कैली था
0: प्रत्येक दिन नशा तथा न्यूरो सर्जरी हार्ट जोड़ी तथा जनरल सर्जरी पॉजिटिव सेवा विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा चेक जांच करा जाए
1: 24 घंटा डिजिटल एक्सरे वीडियो एक्सरे ईसीजी तथा इको मुटु एक्सरे सेवा उपलब्ध भा सुविधा सम्पन्न ल्याब सेवा उपलब्ध भा प्यारालाइसिसको मुखार बिना नशा दापैलक हात गोडा अनि चल्ना बिरामीहरूको नगरा फिजियोथेरापी तथा एकुपेन्द्र थेरापी विधिमा उपचार कैदी था
0: नशा दापैलक बिरामीहरूका निम्ति बिना प्रेसर फिजियोथेरापी तथा एकुप्रेसर थेरापी से स्थापन उपचार गर्दै
1: 24 घण्टा एम्बुलेन्सको व्यवस्था कैदी था असाध्य नागरिक एक करोड महिला अनाथ बाल बालिका अपाङ्ग ज्येष्ठ नागरिक उपहरूको सेवामा 10% छुट्टी व्यवस्था कैदी था कोशीले अस्पताल प्रणाली बाँसगढी शाखा 5 बाँसगढी बर्दिया पुरान पेट्रोल पम्प दक्षिण पाँचर
0: सम्पर्क फोन नम्बर 084-400-192 हो 084-400-210 बाँसगढी बर्दिया सँगसँगै फोनको रेखा 14

0: स्वास्थ्य प्रति हमारी प्रतिबद्धता घटी। वैवाहिक स्वास्थ्य सेवा में सर्वस्व रूप वृद्धि अगली यहाँ तक गुण स्वास्थ्य सेवा में आवश्यक तरलता का इसे कौशल्य अस्पताल बांसगढ़ी में संपर्क करना हार्दिक अनुरोध करती।
1: अस्पताल से देने का सेवा
0: 24 घंटा डॉक्टर के प्रत्यक्ष निगरानी में उपचार करा जाए।
1: प्रत्येक दिन 8 बजे से संध्या 6 बजे विशेषज्ञ फिजिशियन डॉक्टर से प्यार छाती कलेजो नशा मुटु चेक जांच कैसी था।
0: प्रत्येक दिन नशा तथा न्यूरो सर्जरी हाथ जोड़ने तथा जनरल सर्जरी पशुटी सेवा नाक कान घाटी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा चेक जांच करा जाए।
1: 24 घंटा डिजिटल एक्सरे वीडियो एक्सरे ईसीजी तथा इको मुटु एक्सरे सेवा उपलब्ध बा। सुविधा संपन्न लैब का सेवा उपलब्ध बा। केरला शिशु का मुंह बाघना नशा तापक हाथ द्वारा निचलना थेरापी तथा एकुपेंद्र थेरापी विधि से उपचार कैसे था।
0: नशा तापक ग्रामीण के बिना ऑपरेशन फिजियो थेरापी तथा एकुपेंद्र थेरापी से सफल उपचार कर दिए।
1: 24 घंटा एम्बुलेंस का व्यवस्था करेगी बा। असहाय नागरिक एपर महिला अनाथ बाल बालिका अपांग ज्येष्ठ नागरिक हुकन पुनः सेवा में 10% छूट के व्यवस्था करेगी बा। कौशल्य अस्पताल प्रणाली बांसगढ़ी शाखा 5 बांसगढ़ी बर्दिया तुरंत पेट्रोल पंप दक्षिण बाजार
0: संपर्क फोन नंबर 084400192 और 084400210 बांसगढ़ी बर्दिया संपर्क फोन नंबर 11 14 नंबर।
1: Are you?

सभी अपने स्थान निकाय में पैसा सेवकों द्वारा विकास निर्माण का काम शिक्षा स्वास्थ्य खाने पानी सफाई के दूसरे जारी के विषय में पूर्ण समस्या जिज्ञासा भाग में से अपना मन पढ़ाई अपन जिज्ञास ड्राइसिपी सेवा हमारे स्टेडियम का टेलीफोन नंबर 0784-4804 मोबाइल नंबर 98-580-59-003 में फोन देखा प्रश्न समस्या जिज्ञासा टिकाई सकने माथी कम्प्यूटर प्रश्न जिज्ञासा रेकर्ड कर संबंधित निकाई से जवाब लेकर हरेक शनिवार विशेष न प्रसारण करने बाधी बाकी प्राप्ति सुनारी गांव पालिका साथ फतेहपुर स्थित खुला छोड़िया में निर्माणाधीन थाई ब्लड मंडल का प्रमुख जिलाधिकारी सहित का टोली स्थल का निरीक्षण कर जनता का तटबंधन आयोजना कार्यालय लम्ही का प्रमुख निचल छत्रिया का अनुसार प्रमुख जिलाधिकारी दिल कुमार तमाम जिला प्रहरी कार्यालय बाटे का प्रमुख प्रहरी परीक्षक अंगुर शेषी लगायत को उच्च अधिकारी को प्राप्त टोली निर्माण स्थल का अनुगमन कर रहे निरीक्षण का क्रम में बर्खा साखने जो तटबंध निर्माण संपन्न कर लक्ष्य सहित काम कर निर्माण कंपनी में निर्देशन देखे दुई वर्ष आग्राप्ति लज्जा का पैसा तटबंध पुरस्कार पास उस क्षेत्र में कटान उत्पादन का समस्या पड़ा तेरह वर्ष अस्थायी तटबंध निर्माण तटबंध निर्माण वृद्धि शाहीमालपुर का जेपी कम करीब 5 करोड़ रूपया लागत में 500 मीटर लंबा तटबंध निर्माण करता सहित ठेक्का निर्माण कंपनी पर कागज काम जैना

रेडियो पूर्वमा यस वर्ष कार्यक्रम स्वास्थ्य कार्यालय प्रत्याशी जनहितमा जारी

सबै सन्तुलित खाना खाई व्यायाम शब्द गरी धुमपान मदिना बजे दूर रही तर भला नियन्त्रण गरी आजुक निर्णय कार्य जीवन अधार निशामा रोग से बाँची स्वस्थ जीवन अपनाई रेडियो पूर्वाञ्चलको सहकारीमा स्वास्थ्य

0: सारे कैसे तो रखना मौसम फल पुस्ता हो साथ ही हर विद्यालय को सारा किसी उपाय
1: इंटरनेशनल नेपाल फेरी वातावरणीय विशिष्टता समूह के ग्रुप बाटे को साझेदारी संचालन भइरहेको विपद पूर्व तयारी उत्तरशीलता तथा सबलीकरण परियोजना द्वारा जनहित का लागि जारी संदेश

स्तरीय स्वास्थ्य सेवामा प्रतिबद्धता, नागरिक स्वास्थ्य प्रति हाम्रो ऐतिबद्धता, यहाँहरूमा कुनै स्वास्थ्य सेवा आवश्यक परेमा कौशल्य